तखत पटना साहब हरिमंदर दिल्ली में शीश गंदर काब गंडवाला साहेब बंगला साहेब सतो चंडिया साहेब दी दे सुख दे दर्शन दीदार मेले बलारे।

धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज माध राग द्वारा साडे कलयुग जीवां ते तरस कर रहे आ, रहम कर रहे आ, सानू बख्शां दे नाल नवाज रहे आ। अज आपां तख्त श्री हजूर साहब बैठे आ, अज गुरु कलगी तर सच्चे पातशाह दियां नाल खुशियां लै रहे आ। सतगुरु महाराज अज असण असू दे महीने द्वारा कृपा करदे आ। आसन प्रेम अमाहड़ा क्यों मिली है हर जाए, गुरु के प्यार जिंदगी विच मिलाप बनता भी आ टुटता भी आ। नवे नवे सज्जणा नू मित्रां नू मिलते आ, कुछ नाराज उन्हां दे साथ छड़ जांदे आ, पर गुरु के प्यारे महाराज दे बतरे आ साथी अड़ा प्रभ एक दूजा ना ही कोई, एक परमेश्वर वर्गा को साथी नहीं। रोज आपां सुनदे आ सज्जण सच्चा पातशाह सिर साहां दे साव, जिस पास बैठिया सो ही है सबना दा बेसाव, सबना दा आसरा सूपिया। इत्थे महाराज जिग्यासु जना ने बेनती की, महाराज असी अपने वालों अरदास करनी आ कि कृपा करो परमेश्वर नूं मिलना। महाराज केड़ी आप अरदास करिए, केड़ी वेदना दे नाल मालक दे अगे मांग रखिए। फिर महाराज कहिंदे आसुन प्रेम अमाखड़ा क्यों मिली है हर जाए। महाराज कहिंदे कि तेरा जड़ा ये मनुखा जीवन यही असली असू दा महीना आ, इहदे विच रब दे प्यारे शांत चित महात्मा संता महात्मा दे नाल प्रेम करिया कर। तेरे अंदर ऐस महीने उमाहड़ा उत्साह होवे, चाह होवे कि मिलन दा महाराज नूं मिलना, पर क्यों मिलिया खर जाए। जिहड़ा बंदा मिलिया नहीं किद्दां मिलेगा, किहड़ी जगह ते मिलेगा, महाराज मैं कित्थे जावां मालक मिले। कई बार एक शब्द आपां कहिंदे आ कि असीं रब नूं लभण चले आ, रब नूं खोज रहे आ। गुरु के प्यारो लभी दा उहनूं जिहड़ा गवाचा होवे, गवाचे असीं दुनिया विच आ, रब ते साध हजूर हाजर है नाजर, कतन पयो दुराई के याहर जहूर है के खादर हजूर है। परमेश्वर साडे नाल आ, हर एक इंसान दे अंदर रब बोलदा आ, रब सुणदा आ, रब चलदा आ। इस करके रब गवाचा नहीं, आपां रब नूं भुल्ले आ याद करना, क्योंकि भरम दे विच भुल्ले पए आ क्यों मिलिया हर जाए। हे वाहिगुरु किस तरह आप जी नूं मिलना करिए, किहड़ा थां टिकाणा है, किस तरह

हे गुरु के प्यारो रब दे प्यारे परमेश्वर संत संत कोई परावा नहीं कोई लिबास नहीं कोई फिरका नहीं जिन्ना सास करास ना विसरे हर नामा मन मंत तन से सी नानका पूर्ण सोई संत संत अनंत है अंतर नाही जेड़ा संत आ ना उहदा ते अनंत दा रब दा को भेद पाव नहीं भगत कबीर साहब कहिंदे के दुनिया दे लोको मिनू नंद मिनू निंद लिया पंड लिया फिर रब दे प्यारे नू ना निंदो क्योंकि संता को मत को निंदो संत राम है एको कहो कबीर मैं सो गुर पाया जाका नाम बेको कहिंदे रब नू ना निंदो संत साई के लाडले संत साई के पूत संत न होते जगत में बधाता जाता हो कहिंदे उस बधाते ने भी अंतरा जाना सी एक गुरु ग्रंथ साहिब च भी एक पंक्ति आई आ के जेड़े सफल जन्म हर जन का उपजिया जिन कीनो सौत बधाता कहिंदे उन्हां जना दा भी जन्म सफला हो गया जेड़े रब दे नाल जुड़ गया संत सहाई प्रेम के रब दे प्यारे प्रेम दे भुखे आ साडे टकियां दे नहीं गोबिंद भाओ भगत दा भुखा ओ ताडे प्रेम दा भुखा आ ते ओ जे संत रब दे प्यारे मिल जाण ते फिर करना की तिनकै लागां पाए संतां दे चरणी लगना उन्हां दी संगत करनी आ

अष्टपुत्र भैरव के गावह गायन पात्र द्वितीया माल कौशक अलाप है संग रागनी पांचो थाप है गोण करी अर देव गंधारी गंधारी सिहुति उचारी धनासरी ए पांचो गाई माल राग कौशक संग लाई मारु मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक उभारा खौखट औ बहुरा नद गाए अष्ट माल कौशक संग लाए पुन्यायो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सोत उठह तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई।

वर्ती चतर चक्र भुक्ते स्वयं भव सुभंग सर्वदास भुक्ते दुकालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभुते तेग ते गुफतम संवेदनयाफ्त नानक गोविंद सिद्ध श्री अकाल प्रभु जी सहाय दरबार मित्र दरबारा सत्संग से निरंकारा लक्ष्मी खड़ी तुमरे दरबारा।

अनखंड अतुल प्रताप सवन भंडो जिन का ताल वन चेत भेद छेद जागत भेद लवंत भेद जिन ने गन का हंत अनुभचार पद पे अंत अनुभचार पद पे आप अनखंड जगत प्रताप मित प्रताप जह की जगत पसार रचे हो की चजल विचार अनखंड रूप अखंड अनखंड प्रताप प्रचंड अतुल प्रताप प्रचंड जह अंत ब्रह्मांड की ने सोचत ब्रह्मांड की ने सोचत सार व्यक्ति जगत तार रूप तार जह कोट इंद्र ने पार ते ब्रह्म बिन विरार राम सनन विचार राघो ना कबूल मुब ना कबूल कई सिंध बिंधन केंद्र कई मचंद बिंधन केंद्र कई देवा कुमार कई कृष्ण ते संत तार कई सुन तार कई इंद्र पार कुहार कई कई कहुने वली करम करंत कहुने वली करम करंत कहुं जले हरि थले हरि उड़े हरि बले हरि बने हरि गले हरि बले हरि जिते हरि गले हरि हरि हरि जिमे हरि हाँ हरि जम हरि हरि हरि अतुख हरि हरि हरि हरि हरि अकाल हरि अपाल हरि अचे हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि अपाद हरि अमित हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि

0: जल के तरैया को गंगी ऋषि कहा जल के आगे के बचैया सूर्य को हस जमानी है सूरज सूर्यया दा है गौ लगी बड़ाई दे चंद्रया दे भैया लोग के लिए कार्य में चंद्र धर्मस्य भैया को नारायण चंद्र में दिन दुआ का दशम गौ लक्षण में चौथे दो काल में पहना तो पदा के गुरु जगत को पार सबे दे को प्यार दे की के नाम के मन दे रहल है के नाम के महामद लोग पर बटे रुको कन्हैया नाम का जो रूप भैया ब्रह्म रूप दे रहल है वो धरी बड़ा बेटू का को बड़ा बड़ा रूप जितना दा है नाचत फिरत मोर बादर करत लागो रदान मनियो में बाबा करत भी करत हमें चंद्र में पसी कर भी सुरत दबाए जने चंद्र सीधा राज प्रस घूमो को भज चंद्र नाच पप से से दरस्तिया नमा से न पेरे द्वारे सब बसल को मामर से से पस दिन आदेश तन है ज्ञान के भी इस काल नजर के आदि सत्य जो दिन की चौक रे फिर आई चंद्र जुगन की चौक रे फिर आई फिर एक फिर गए राम रे एक संगे एक लाल भी फिर आई चंद्र सारे भी तन के दिए दे को पुराण के तन वेदन समूह में के
1: ज्ञान

सोगंग नमो हंग नमातंग नकर मंग नवर मंग नजन मंग नजातंग अद्वै खंग बे खंग जूनी स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे यंग परा परम प्रज्ञा प्रकाशी अचेतंग छयाद अद्वया विना

जाते न बाते न सत्र न मित्र सुभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायण नरंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभं भूतंग अपेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न केहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जो नियच्छयाद अद्वय जोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं भयनिर्विखातं अछेदंग वेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न केहंग न परमंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न वेदंग न भरमंग सदेव

अच्छे स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहंग न गेहंग न सुखंग साकं परे अंग पवित्रं पुनीतंग दागं न जातं न बातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न बर्मं न सर्मं न साके न बर्मं न चर्मं न कर्मं न बाके न

दान भी हूँ कहूँ जा छपि थरे मान भी हूँ कहूँ राजसी हूँ कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपंग कहूँ मद्र बानी कहूँ छद्र स्वरूपंग कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपंग कहूँ चेष्टा चार चित्रंग स्वरूपंग कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजं कहूँ राज रीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश भाख्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारंग कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा।

अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा स्वरूप नाशन तुट तेज अनकुट भंडार दाता दुरंत सर्वं प्रकार अनुभूत तेज अंश जगात करता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योतबान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चिन्ह चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम फेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाप नहीं वर्ग व्याध जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय

जमीन जमा जे रचिंग सर्व मकी नमका जे राग न रूप न रेख रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भयं जे खेद न भेद न छेद छयं जेह जात न पात न मात बितंग जे रचयं छत्री छत्र चितंग जेह राग न रेख न रोग भणं जे द्वैख न दाग न दोख गणं जेह अंडह ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नव खंड सचयो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव बद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नकिंद नकं श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उद भुजंग ये देव देव सराध पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न जोत जुतंग जेह तात न मात न भ्रात सुतंग जेह रोग न शोक न भोग भुवंग जेह जंप किन्नर जा छ जुवंग नर नारण पुंसक जाहि किए गण किन्नर जा छ भुजंग दिए गज बाजर थादिक पाद गणंग भवभूत भवेख भवान तुवंग जेह अंडज सेतज जेर रजंग रज भूमा काश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भो मेरा काश निवास चितंग रज रोज एकादश चंद्र

छूत मतंगन गाध ब्याद अनाद कतंगन खेद भेद छेद नरंग जे चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय सोक न भोग न जोग जुगंग भो भंजन गंजन आदिश रंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाछ भुजंग रचे मण माणक मोती।

अगंज आद देव है अभंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदीव सर्वसात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदा।

रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानी है, सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानी है। नराग रंग रूप है, न रोग राग रेख है, अधोगतागतक है, अभूत ब्रह्म फेक है, न तात्मात जात है, न पात चिहन वर्ण है, अदेक सेक वेक है, सदीव विश्व भरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेष विश्व भरण है, जिमी जमान के बिके सदीव करम भरम है, अद्वेक है, अभेक है, अलेखनाथ जानिए, सदीव सर्वठोर में विशेख आन मानिए, न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराण यो कुरान नेत नेत कह बतावई, न कर्म में न धर्म में न भरम में बताइए, अगंज आदि देव है कहो सो कैसे पाइये, जिमी जमान के बिके समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है, नहान है न बान है, समान रूप जानिए, मकीन यो मकान अप्रमान तेज मानिए, न देह है न गेह है, न जात है न पात है, न मंत्र है न मित्र है न

है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न नेह है न गेह है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है।

परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीद है, न सोज है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न देह है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है,

परम है अभूत है, अछेद छेद है सदा, गंज गंज गंज है अभूत अभेक है, बलिय रूप राग रंग है, न द्वैख है न भेक है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है न पात है।

न रंग राग रूप है, न रूप रेखरार है, न हाव है, न भाव है, न दाव को प्रकार है। गजाधपि नराधपि करंत सेव है, सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा। अगस्त आदि जे बड़े तपस्त पे विशेखिये, बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिये। अगाध आदि दीव की अनाद बात मानिए, न जात पात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानिए। सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रह।

रूप रागना रेख रंगना जनम मरण विहीन आदनाद अगाध पुरख सोधरम करम प्रवीण जंत्र मंत्र तंत्र जाको वाद पुरख अपार हस्त कीट बिखे बस सब ठौर मैं निर्धार जात पात ना तात जाको मंत्र मातना मित्र सर्व ठौर बिखेर में उजे चक्र चिहन न चित्र आद देव उदार मूर्त अगाध नात अनंत आद अंत न जानिय अविखाद देव दुरंत देव भेव न जान ही जे मरम वेद कतेब सन कौ सन के सनंदन पावे न सेब जछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्ग पार नेत नेत पुकार ही शिव सक्रो मुख चार सर्व सपद पतार के दर जप ही जह जाप आद देव अगाध तेज अनाद मूर्त अताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे ओ विराज धीराज राज प्रवीन जाछ गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय न माहे वैष्णंके बिखे विराजे सूत्र भी वहनाहे गूढ़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप रात दिवस न मद उर्द न भूमा का सनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जातरण देव पूजा गोर के नाधीन सर्व सपद पतार के दर जानिए जह जूत शेष नाम स हंस फन नहनेत पूर्ण होत सूत सूत हटे सफ़ सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पड़त पड़त सके महागव गर्द गाड़ अनंत हार हार कहियो सुभु मिल नाम नाम दुरंत वेद भेद न पायो लखियो न सेवक तेब देव दानो मूड मानो जछ न जानै जेब भूत बाप भवान भूपत

दीन बंध प्रवीण श्री पद सर्व को करतार वरन जिहन ना चक्र जा को चक्र जिहना कार जात पात ना गोत्र का था रूप रेख न बरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को भरन दुष्ट कंजन शत्रु भंजन

कोटेंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुंच कृत भे मुखचार आध अंत न मध जाको भूत भव भवान सद दुआ पर तृतीया कल युग जत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हर हर थके सबे नहीं पाइये तह पार नारद आदक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सबे कर कूट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच बच्र पार सोध सोध थके महासुर

को आत्मा स्वरूप है कहाँ श्रेष्ठ को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहूँ सकल विस्तार दोहरा, कह जी तब कह मरण है कवन सुरक कह नरक, को सुगड़ा को मूढ़ता कहाँ तरक अवतरक दोहरा।

त्यांच्या द्रचिते आसुरी विहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप ते चंडासुर चंडन मुंड विहंडन धूम्र विदुंसन महगमथे दान प्रहारन नरक निवारण नदम उदारण उर्द अधे जय जय हो सी मासुर मर्दन रम्भ कपर्दन आदि वृत्ते डावरू डवंगे बर बवंगे भुजा फरंगे तेज बरंग लंकुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायुध चमके भूखण दमके अस्ति चमके फूंक फनंग जय जय हो सी मासुर मर्दन रम्भ कपर्दन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकण धुजा परंकण फणि फुंकारण जोत जिते सरधार विपरखण दुष्ट प्रकरखण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे जय जय हो सी मासुर मर्दन भूमा का सन उर्द अधे दामनी प्रहासन सुछम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुड़।

जाए जाए उसी में कासुर मर्दन भूमा कास पताल जलंग चाचर चमकार छुरहारण धुम्ब धुम कारण द्रव मथे दाढ़ विवृतं तेजोग जयंती मनुज मथन।

स्टार्ट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र कते केसरी प्रवाह है सुत सन्ना है अगमथा है एक वृते जय जय हो सीमा खास मर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे गावरू कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण वितलतले जय जय ओसे सब ठार निवासन बाय बताल आकाशन ले संकटे निवारण धम उदाहरण तेज प्रकरखण तुंद तपे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाथ अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जीवे जय जय हो सी सहस्र प्रकरखण आद अनिल अगाध अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय हो सी रक्ता सुर खंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज बिलोचन प्रतन विमोचन सोच विसूचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरणा से

घंट का बिराजे रुण सुन बाजे ब्रह्म भाजे सुनत सुरंग को किल सुन लाजे किल बिक भाजे सुको पराजे मध उरंग दुर्जन दल दजे मंथन रिजे सब न भजे रूह रणंग जय जय उसी मैं खा सुर मर्दन चंड चक्र धन आदि गुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोस रोदन क्रूर वृत्ते धुमराज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विदुंसन सोत मते जाल पाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट

सुर नर प्रतिपारण पति दो धारण दोष निवारण दुख हरे। जय जय हो श्री महिषासुर मर्दन विश्व विदुन संश्लिष्ट करे। दामनी प्रकाशे उन्तर नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकर खंड सर्वर वर्कण दुष्ट प्रदर्श।

प्रदक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रदा है अर्दल गा है दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने याद अंते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन साध प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करी ली गर्भ कही ली जोत जती ली दुंद मते अष्टायत जमगण सहस्र जमगण दामिन दमगण आद प्रते डुक डुकी दमंके बाघ बंके भुजा फुरंके शुद्ध कते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक बटे पापान बेहंडन दोष प्रचंडन खंड अखंड

सब जीव जंत जानंत जाए मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई पलट सूरत सिजता कराए प्रभ एक रूप तय कह लखाए।

दीनन की प्रतपाल करे नित संतु भार्गनी मन कारे पच पसूनक नाग नरा देव सर्व समय सबको प्रतपार है। पोकत है जल मैं थल मैं बल मैं कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दया नित दोखन देखत है पर देत न हारे। दाहत है दुख दुखन को दल दुजन के बल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभार है। पार न पाए सके पद्मावत वेद कदेव वेद उचारे रोज ही राज बिलोक तराज करो गुरुहान की रोज नटार है। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव कपे अंग बेव न बेव लख्यो भ्रम से भरमाए वेद पुराण कदेव।

है दीन दयाल दया कर श्री पद सुंदर श्री पद्मापद ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न वह है। देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त अगे अच्छा है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे है। काहे को डोलत है तुमरी सुत सुंदर श्री पद्मापत ल है। रोगंते अर सोगंते जल जोगंते वो बांध बचावे शत्रु अनेक चलावत गावत।

नारद सेज दुरानंद से रुमनारिक से सब हुमिल गायो भेद कतेव न भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके ने पार उमापत से दसनाद सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन में जय को अमितूज सब जग छायो वेद पुराण कतेब कुरान अभेद नृपान सब बजहारे भेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साक न सोक न संग त्यारे आद अनाद बेगद वेग जप्यो तिन ही कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए वो दान महाव्रत धारे देश फिरो कर भेष बोधन केस धरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे

अत्र के चलैया चित्त छत्र के धरैया छत्र धारियो के चलैया महासत्रण के साल है दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है जोध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है पूर्वी न पार पव हिंगुला हिमालय द्यावे गौर कर देजी गुण गावे तेरे नाम है जो की जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे अरब के अरबी अराधे तेरे नाम है फरके फिरंगी माने कंधारी कोरे से जाने पछम के पछमी पछाने निज काम है मर टाम गेले तेरी मन सो तपस्या कर दृढ़ वैद लंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे में चलत है रूह के रूहले मांग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले बाब पुंज को मलत है गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीस न्यावे ते पते थे आए दुख देह के दलत है जिन्हें तोहे ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल स्यों फलत है देव देवदान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अवेश कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे नदीन साध दीन कहियत है पाई न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है हाथी की पुकार पल पछ पहुचतता है चिट्ठी की चिंगार पहले ही सुनियत है किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है किते ससरासी किते सूरज प्रकाश किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है किते महादीन किते व्यास से प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जश कहियत है करते है विचार पैना पूरन उपाय।

पूरन अवतार निराधार है न पार वार पाई है न पार पे अपार के बखानी है अद्वै अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूं के राशि है अनाशी कह के मानी है जंत्र हूं न जात जा के बाप हूं न मायता की पूर्ण प्रभा की सुछटा के अन मानी है तेज हूं को तंत्र है के राज सी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानी है तेज हूं को तार है के राज सी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के साधना किसान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूं को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को कारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है सिद्ध को

जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन

कर चौपाई को कह चौपाई सम सतरह सहस भणी जय अर्ध सहस फुन तीन कह जय भादव सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखे अन्य त्रिया

राज आप करो हमरे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा, दास जान कर कृपा करो, मोय हार परा मैं आन द्वार तोहे, अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा, दास जान दे हाथ उबारो, हमरे सब बैरिन संघारो,

त्याग कहाँ चित तम धरो। अब रीज के देहो वह हम कहो जाहो बिनती कर जोर करो। जब आओ कि औध निदान बने अत हीरन में तब जूझ मरो दोहरा। दसम कथा भागवत की भाखा करीब नाय अवर बासना नाहे प्रव धर्म युद्ध के चाय सवैया। धन जियो तह को जग में मुख ते हर चित में युद्ध विचारे दे

प्यारे ज्ञाने की बढ़नी मनो हाथ ल कातरता कुतवार भारे दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नीत स्वर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अरगा वह दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्या छह सकै न कोई सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वधि प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परि लौ लिहो सुधारा दोहरा नेत्र तुम के चरण तर सत द्रव तीर तरंग श्री भगवत।

मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री अस पान कृपा तुम री कर मैं ना कहो सब तुहे बखान।

0: कृपान कलगीधर स्वामी धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज
1: बोले
0: सत्संग जी गुरु साहब जी का लंगर तैयार है प्रसादा शक्कर गुरु महाराज दिया खुशियां प्राप्त करो बोले।

जिन को कृपा करी जग जीवन जग जीवन हर पुर तारियो मन मान तारियो मन मान धर्म राय दरकार करम पारे जन नानक जल निखार समझाए।

वायन चले नचर गोर बालाने फेर से बालाने फेर उड़ाला जति पर बैठे उड़ाला जाने पर बैठे सिद्धिया आरं प्रेता लुटिया आरती नुटिया गावन प्या गावन का गावन प्या गावन का सिता जे गावन सिता नरपाओ नरंका नरसो जगना क्या सरदा नरका क्या सेव सेव करम चढ़ाओ सेव निरंजना मत चाओ निरंजना मत चाओ सिखा पिचा नीर कमला है पिता कमला का बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो नानक दिन मन

ज्ञान नचहे बाजे बाबै रूप करे सिगा। उचे को कहे वादा गावे जो दाका विचार, मूर्ख पंडित हिकमत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करेगा।